सबे मुए हैं केते कृष्ण भए हैं अंत सबे गए हैं हम तो एक रमैया ले हूं।

समीप कहरे तत्तर गते संसारे नानक सूग हरखंग व्यापते अजा पुगंत कंद मूलंग बिसंते समीप कहरे तत्तर गते संसारे नानक सूग हरखंग व्यापते छलंग छिद्रंग कोट बिघनंग अपराधंग किल बिख मलंग परम मंग मान अपमानंग मदंग माया व्याप्तंग मित्र जन्म मित्र जन्म परमत नरक अनक पावंग ना सिद्धते निर्मलंग साध संगे जपंत नानक पाल नाम रमांत गुर गोविंद नित्य प्रत है तरन सरन स्वामी रमनशील परमेश्वर है कारण कारण समर्थ दान देत प्रभ पूर्ण निरास आस करनंग सगल अर्थ आले गुण निधान सिमरंत नानक सगल जा जंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगमंग महादुख सर्व सुखने दुर्वचन भेद परमंग साकत पिसनंग तास बजन सुरजने अस्थंग सोग हरकंग पै खीणंग निरपवै पै अटबिया महानगर बासंग धर्म लखने प्रभमया सा संग राम राम रमणंग सरन नानक हर हर दयाल चरण हे जित सूर संग रामंग अत बलना बा मर्दने गण गंधर्व देव मनुखे पशु पंखे बैमोने हर करण हरंग नमस्कारंग सर नानक जगदीश ब्रह हे कामंग नरक विश्रामंग बहु जोनी परमावण चित हरनंग त्रै लोक गमहंग जप तप सील बिदारने अल्प सुख वित चंचल ऊच नीच समावण तब पै बमुचत साध संगम ओट नानक नारायण हे काल मूल क्रोधंक दंच करना मैं उपर जते विख्यांत जीवंग विषयंग क्रोत निरतंग क्रोत जथा मरकटे अनक अनक शासन ताड़ांत जम दूते तब संगे अतरमंग नरे दीन दुख पंजन दयाल प्रव नानक सर्व जी रखया क्रोत हे लोभा लंपट संग सिर मुहरे अनक लहरी कलोलते तावंत जिया ब प्रकारंग अनक पांत ब डोलते नच मित्रंग नच इष्टंग नच बद ब नच मात पिता तब लज्या करनंग क्रोत खादे खादंग असाजंग साज समझया त्रै त्रै सन स्वामी बिख्याप्तंग नानक हर नर हरे हे जन मरन मूलंग अहकारंग अहकारंग पाप आत्मा मित्रंग तजंत सतरंग दृढ़ अनक माया विस्तीर्ण अवंत जवंत थकंत जिया दुख सुख ब भोगने परम प्यान ध्यान रमंग महाविकट असाध रोगने वैधंग पार ब्रह्म परमेश्वर अराध नानक हार हर हरे हे प्राण नाथ गोविंदे कृपा निधान जगद गुरो हे संसार पा ताप हरने करना मैं सब दुख हरो हे सरन जोग दे आले दीना नाथ मया करो शरीर सबसत खीण समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधवे चरण कमल सरन गरमंग गोपाल कीर्तने साध संगेन तरनंग नानक महासागर पह दूतरे सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म पार ब्रह्मंग हस्त काया रखिया परमेश्वरे आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वरे सर्व रखिया गुरदयाले पै दुख बिनासने भगत बचल नाथ नाथे सर नानक पुरख चुते जेन कला तारियो कासंग बेसंतरंग कास्ट बेस्टंग जेन कला ससूर नखतर जोस्तंग सासंग शरीर तारनंग जेन कला मात गर्व प्रतिपालंग नै छह जंत जठर रोगने तेन कला स्तंभक सरोवरंग नानक नै छह जंत तरंग तोहने गुसाई ग्रिस्टर पेन सिरंग सर्वतर जीवने लब्ध्यंग संत सगेन नानक शब मार्ग हर भक्त ने मस्तंग पगनंत सैलंग करदमंग त्रंत पपील कै सागरंग लगंत पिगंग तुम प्रगास अध कै साध संगेन समरंत गोविंद सर नानक हर हर हरे तिल कहीना जथा बिपरा अमरहीना जथा राजने आदबहीना जथा सूरा नानक धर्महीनंग तथा वैसने
वैसन वै ना संकंक ना चंकरंग ना गदा ना सयामंग असचार्ज रूपंग रहंत जन्मंग नेत नेत कथांत वेदा ऊच मूच अपारग बिंदे बसंत साध हृदयांत अचोत बजंत बजंत नानक बड़ पह गया उद्यान बसनंग संसारंग संबंधी स्वान सयाल खरे बिखम स्थान मन मोह मिद्रंग महा साध पंच तस करे हीत मोह पै परम परमणंग हंग फास तीखण कठने पावक तो साध कुरंग अगम तीर न लंघने पज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरन उदाहरण कृपा कृपा करंत गोविंद गोपाले सगलंग रोग खंडने साध संगेन गुर रमत नानक सरन पूर्ण परमेश्वर सयाल मुंग मुद्र मनुख्यंग हृदयंग भूम बैरने निवंत हवंत मिथ्या चेतनंग संत सबजने अचेत मूड़ा ना जनंत कटंत सासा नित प्रते छह जंत महा सुंदरी काया काल कन्या ग्रहस्त रचंत पुरखे कुटंब लीला नित आसा बिख्या बिनोद परमत परमत बहु जन्म हार्यो सर नानक करना मैं हे जेबे रस गे मुद्र प्रै तुहंग सत तंग परम बादंग अवर्त इच्छे एथे सुध अशरने गोविंद मोदर माधव गर्दब गर्वंत नारी मैं दोन मंत बलवंत बलात् कारने चरण कमल नाप जंत त्रैण समान त्रिग जन्मने हे पपील का गृष्टे गोविंद सिमरन तुअंग तने नानक अनक बार नमो नमे तरनंग ता मेरंग सहकंग ता हरियंग बुढ़ता तरियंग ऊनता परियंग अंधकार सुकोट सूर जरा उजारंग बिनवंत नानक हार गुर दयारंग ब्राह्मण संग ब्राह्मण संग उदरंग ब्रह्म कर्म से पूर्ण आत्म तंग संसार गहंग ते नर नानक नेह पलै पर दर्भ हिरनंग बा बिघन करनंग उचरंग सर्व जी कै लौ लय त्रिष्णा अत पत नानक साध संगम ना सहसै महला पंजवा गाथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर पूरा पोप सुगंधा परस मनुख्या दहंग मलिनंगम मजा रुतिर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अगनानो परमाणु परजंत कासे दीप लो से खंडरे गाशेन नैन परेण नानक बिना साधु ना सिद्ध जानो सत बंतो मरनो दृष्टेन मिथ्या कीर्त साध चलंतो पणंत नानक साध संगेन माया चित परमेण इष्ट मतरीक वाद वै लबदंग साध संगेन नानक सुख स्थानंग गोपाल भजनंग मैं लागर संगेन निम बिरख से चंदने निकट बसंतो बासो नानक हंग बुद्ध ना बहुते गाथा गुफ गंपाल कथंग मतंग मान मर्दने हतंग पंच सत्रेन नानक हर बाणे पर हरने बचन साध सुख पंथा लहंता बड़ कर्मणे रहंता जन्म मरण रमणंग नानक हर कीर्तन पत्थर पर जेन चढ़ियंग जड़ियंग पेड़ संपता नाम बिऊन बिख मता नानक बहंत जोन बासरो रैनी भावनी साध संगेन लपतंग बड़ भागने हर नाम गुण रमंग नानक संसार सागर न व्यापने गाथा गूढ़ पारंग समझणंग बिरला जने संसार काम तजनंग नानक गोविंद रमनंग साध संग में समंत्र साध बचना कोट दोख बिनासने हर चरण कमल त्यानंग नानक कोल समूह धारने सुंदर मंदर सहने जेन मध्य हर कीर्तने मुक्ते रमन गोविंदे नानक लबदंग बड भागने हर लबदो मित्र समितो विदारन कदे न चितो जाका असल तोल मितो सोई नानक सका जी संग कितो अप जसंग मिटांत सत पुत्रे सिमरतबे रिदे गुर मंत्रने प्रीतम भगवान अचूत नानक संसार सागर तारने
ਮਰਨੰਗ ਬਿਸਰੰਗ ਗੋਬਿੰਦੇ ਜੀਵਨੰਗ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣੈ ਲਵਣੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੂਰਬ ਲਿਖਣੈ ਦਸਨ ਬਿਹੂਣ ਭਿੰਗਮ ਮੰਤਰੰਗ ਗੌੜੀ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਆਦ ਪਾੜੰ ਸੰਤੰਗ ਨਾਨਕ ਲਬਦ ਕਰਮਣੈ ਜਤ ਕਥ ਰਮਣਗ ਸਰਨੰਗ ਸਰਵਤਰ ਜਿਉਣੈ ਤਤ ਲੰਗਣੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦੰਗ ਗੁਰ ਦਰਸਨੈ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਮਨ ਬਧਿਅੰਗ ਸਿਧਿਅੰਗ ਸਰਵਤਰ ਜਿਉਣੈ ਤਤ ਲੰਗਣ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦੰਗ ਗੁਰ ਦਰਸਨੈ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਮਨ ਬਧਿਅੰਗ ਸਿਧਿਅੰਗ ਸਰਬ ਕੁਸਲਣੈ ਗਾਥਾ ਗਵੰਤ ਨਾਨਕ ਭਵੰਗ ਪਰਾ ਪੂਰਵਣੈ ਸੁਭ ਬਚਨ ਰਮੰਗ ਗਵਣੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਉਦਰਨੈ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੰਗ ਨਾਨਕ ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਲਭਤੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਚਾਰੰਗ ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਮ ਔਰ ਧਾਰੰਗ ਕੁਲੇ ਸਮੂਹ ਸਗਲ ਉਧਾਰੰਗ ਬਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਤਾਰੰਗ ਸਿਮਰਣੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੰਗ ਉਦਰਨ ਕੁਲ ਸਮੂਹਣੈ ਲਭਧਿਅੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਬਡਭਾਗੀ ਪੈਟ ਅੰਤ ਦਰਸਨੈ ਸਰਬ ਦੁਖ ਪ੍ਰਤਿਆਗੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਦੇੜਤਣੈ ਲਭਦੇਣ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਲਿਖਣੈ ਹੋ ਹੈ ਹੁਬੰਤੋ ਹਰਨ ਭਰਨ ਸੰਪੂਰਨੈ ਸਾਧੂ ਸਤਮ ਜਾਣੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਸੁਖੇਣ ਬੈਣ ਰਤਨੰਗ ਰਚਨੰਗ ਕੁਸੰਬ ਰੰਗਣੈ ਰੋਗ ਸੋਗ ਬਿੰਗਮ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਨਾ ਸੁਪਨੈ ਪੁਨੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੱਥ ਕਲਮ ਅਗਮ ਮਸਤਕ ਲੇਖਾਵਤੇ ਉਰਜਰੇ ਉਹ ਸਭ ਸੰਗ ਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੇ ਉਸਤਤ ਕਹਿ ਨ ਜਾਏ ਮੁਖੋ ਤੁਹਾਰੀਆਂ ਮੋਹਿ ਦੇਖ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮੈਂ ਬੈਸ ਕੇ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਕਹਾ ਅਰਪੇ ਸਭ ਸਿੰਗਾਰੇ ਹੋ ਜੀਓ ਸਭ ਦਿਵਾ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜ ਸੋਕੰਤ ਵਿਛਾਈਐ ਹਰ ਹਾਂ ਮਸਤਕ ਹੋਵੇ ਭਾਗ ਤਾਂ ਸਾਜਨ ਪਾਈਐ ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੂਲ ਸਭੇ ਕਿਸ ਸਾਜਿਆ ਸੁਲੇ ਕੀਏ ਸਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਚਨ ਪਾਜਿਆ ਜੇ ਕਰ ਆਵੇ ਕੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਈਐ ਹਰ ਹਾਂ ਕੰਤੇ ਬਾਜ ਸਿੰਗਾਰ ਸਭ ਵਿਰਥਾ ਜਾਈਐ ਜਿਸ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਸਾ ਬਡ ਭਾਗਣੇ ਤਿਸ ਬਣਿਆ ਹੰਬ ਸਿੰਗਾਰ ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣੇ ਹੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਅਚਿੰਤ ਮਨ ਆਸ ਪਰਾਈਆ ਹਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਆਇਆ ਕੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਈਆ ਆਸਾ ਏਤੀ ਆਸ ਕੇ ਆਸ ਪਰਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਈਏ ਮੈਂ ਤਨ ਅਵਗਣ ਬਹੁਤ ਕੇ ਅਵਗਣ ਛਾਇਆ ਹਰ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕੌ ਨਾਨਕ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਧਿਆਇਆ ਦੁਤਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਾਇਆ ਮਿਟਿਆ ਆਵਾ ਗੌਣ ਜਾ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਹਰ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਦਮ ਅਗਨ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ ਸਖੀ ਮੋਰੇ ਕੰਠ ਰਤਨ ਪੇਖ ਦੁਖ ਨਾਸਨਾ ਬਾਸੋ ਸੰਗ ਕਪਾਲ ਸਗਲ ਸੁਖ ਰਾਸ ਹਰ ਹਰ ਹਾਂ ਰਿਧ ਰਿਧ ਸਿਧ ਨਵ ਨਿਧ ਬਸੇ ਜਿਸ ਸਦਾ ਕਰ ਭਰਤੈ ਰਾਵਣ ਜਾਏ ਸਈ ਤਾਂ ਲਾਜੀਐ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਰੇ ਪਰ ਧਰਬ ਛਿਦਰ ਕਤ ਢਾਕੀਐ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਗਲ ਕੁਲ ਧਾਰੇ ਹਰ ਹਾਂ ਸੁਨਤੇ ਪਏ ਪਨੀਤ ਪਾਰ ਬੰਬ ਚਾਰੇ ਉਪਰ ਬਨੇ ਅਕਾਸ ਤਲੇ ਧਰ ਸੋਤੇ ਦਹਿ ਦਿਸ ਚਮਕੇ ਬੀਜਲ ਮੁਖ ਕੋ ਜੋਤੇ ਖੋਜਤ ਫਿਰੋ ਵਿਦੇਸ ਪੀਓ ਕਤ ਪਾਈਏ ਹਰ ਹਾਂ ਜੇ ਮਸਤਕ ਹੋਵੇ ਭਾਗ ਤਾਂ ਦਰਸ ਸਮਾਈਏ ਡਿੱਠੇ ਸਵੇ ਤਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇ ਆ ਬਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਬਸਤੀ ਸਗਨ ਪਾਰ ਰਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾਈਏ ਦਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰਾ ਚਾਤਰਕ ਚੇਤ ਸੁਚੇਤ ਸੋ ਸਾਜਨ ਚਾਈਐ ਜਿਸ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਸੇ ਕੋ ਆਈਐ ਬਨ ਬਨ ਫਿਰ ਤੋ ਦਾਸ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਹਰ ਹਾਂ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਮਾਂਗੇ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਬਲਿਆਰਨੇ ਮਿਤ ਕਾ ਚੇਤ ਅਨੂਪ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਨੀਏ ਗਾਹਕ ਗੁਣੇ ਅਪਾਰ ਸੋ ਤਤ ਪਛਾਨੀਏ ਚਿਤੇ ਚਿਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਕਣਾ ਹਰ ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਚੋਰੇ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪਾਵੇ ਸੱਚ ਧਨਾ
सुपने उबी पी पही गयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला सो खोजो ताके चरना कहो कत पाइये हर हां सोई जताना बताए सखी प्रै पाइये नैनन देखे साध से नैन बयालिया करन सुने नाद करन मुंद कह लिया रसना जपे न नाम तिल तिल कर कटिए हर हां जब बिसरे गोविंद राय दिनों दिन कटिए पंकज फते पंक महामद गुफिया अंग संगुर जाए विसरते सुफिया है को ऐसा मीत जे तोरे बिकम गाठ नानक एक सिरी तार नाथ जे टूटे लय साठ ताबो दसा नेक प्रेम परब कारने पंच सतावे दूत कवन भिद मारने तीखण बाण चलाए नाम प्रब त्याइये हर हां महाबिकादी कात पूरन गुर पाइये सतगुर कीनी दात मूल नानक उटै खावो पहुंचो सब गुरमुख छुटै अमृत नाम निदान तिस दिता तो सहारा नानक सदा राध कदे न जाहे मारा जिथे जाए भगत सो थान सुहावना सगले होए सुख हर नाम ते आवना जी करन जयकार निंदक पूए पाच साजन मन आनंद नानक नाम जाप पावन पतत पनीत कते नहीं सेविये झूठे रंग खुवार कहां लग खेविये हर चंद औरी पीख काहे सुख मान्या हर हां

जय मिल मिल कावे संत सगल को दी जय जिसे प्राप्त होए तिसे ही पावने हर हां हूं भलिहारी तिन जे हर रंग रावणे बैदा संदा संग कठा होया औख दयाए रास बिच आप खलोया जो जो उना कर्म सुकर्म होए पसरिया हर हां दुख रोग सब पाप तन ते खिसरिया चौ बोले महला पांजवा इक ओंकार सतगुर प्रसाद सम्मन जो सप्रेम के दम के होती साठ रावण होते सो रंक ने जिन सर जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच गिरिया बीचन राई होत चरण कमल मन भेदियो बूजन सुरत संजोगा सागर मेर अध्यान उद्यान बन नवखंड सुदा भरम मूसन प्रेम परम के गुनहो एक कर करम मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीधे बाधे कमल में पवर रहे लिपटाए जप तप संजम हरख सुख मान मैत हर गर्भ मूसन निमख प्रेम पर बार बार दियो सर्ब मूसन मर्म न जाने मर्त हित संसार प्रेम प्रम न बेदियो उर्ज्यो मिथ बिहार गब दब जब जारिये बिशरत प्रेम ब्याल मूसन तब ही मूसिये बिशरत पुरख दयाल जाको प्रेम सुभाव है चरण चित मन माहे नानक बिहरी ब्रह्म के आनन कत हो जाहे लख काटी ऊचो कणा कणो चंचल चीत बिहाल नीच कीच निमिरत कणी करनी कमल जमाल कमल नैन अंजन सयाम चंदन बदन चित चार चंद्र बिदन चित चार मूसन मगन मराम स्यो खंड खंड कर हार मगन प्यो प्रे प्रेम स्यो सूदन बिस सिमरत अंग प्रगट प्यो सब लो मह नानक अदम पतंग सलोक भगत कबीर जियो के इक ओंकार सतगुर प्रसाद कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम आद जुगादी सगल भगत ताको सुख बिसराम।

मोह मिलियो पर भय अपना संगीत जय गोविंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज पलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझया मीता हमारा सोए। कबीर आई मुझे पह अनक करे कर भी पीस, हम राके गुरे अपने उनकी नू आदेश। कबीर सोई मारिए जे मुए सुख होए, पलो पलो सब को कहे।

से जान मारे भगवंता। कबीर चंदन का बेरबा पला बेड़ियो ढाक पलास, ओय पी चंदन हुए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर वास बढ़ाई बुढ़िया मत डूबो कोए, चंदन के निकटे बसे बास सुगंध न होए। कबीर दीन गुवाया दुनी स्यों दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गावल अपने हाथ। कबीर जय जय हूँ फिरियो कौतक ठाओ गाओ, आगे आग लगी ते तोलहर जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोइये जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हाटे आट बिकाए।

कबीर साकत ऐसा है जैसी लसन की खाना, कोने बैठे खाइए प्रगट हुए निदान। कबीर माया डोलने पवल चुकोलनार, संतो माखन काया छाछ पिए संसार। कबीर माया डोलने पवन बहे बतार, जिन बलोया तिन काया अवर बलो बनहार। कबीर माया चूरटी मुसमुस लावे हाट, एक कबीरा ना मुसे जिन कीनी बारे बाट। कबीर सुख नाए जग करे जो बहुते मीत, जो चित राखे एक स्यों ते सुख पावे नीत। कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद।

बोला। कबीर तांस्यो प्रीत कर जाको ठाकर राम, पांडत राजे भूपते आवे कौने काम। कबीर प्रीत एक सियो किए आन दुबदा जाए, पावे लांबे केस कर पावे कगर मडाए। कबीर जग काजल की कोठड़ी अंध परे तिसमाए, हो बले आरी तिन को पैस जो नीक सन जाए। कबीर एहो तन जाएगा सको तलेहो बहोरा, नांगे पावो दे गए जिनके लाख करोरा। कबीर एहो तन जाएगा कबने मार्ग लाए, कै संगत कर साध के संगत कर साध के कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जगमुआ मर पिन जाने कोए, ऐसे मरने जो मरे बहर न मरना होए। कबीर मानस जन्म दलब है होए न बारे बार, ज्यो बन फल पाके पुए गिरे बहर न लागे डार। कबीरा तू ही कबीर तू तेरो नाओ कबीर, नाम रतन तब पाइये ज्यो पहले तजह शरीरा। कबीर चंख न चंकिए तुमरो कह न होए, करम करीम जो कर रहे मेटन साके कोए। कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सए जो मर जीवा होए। कबीर उज्जल पर हर काप

क्या जानो कुछ हर किया पियो कबीर कबीरा। कबीर सुपने हूं बड़ राय के जे मुख निकसे राम। ताते पग की पाहने मेरे तन को चाम। कबीर माटी के हम पूतरे मानस रखियो नाओ। चार दिवस के पौने बड़ बड़ रूंदे ठाओ। कबीर मेहंदी करके कह लिया आप साए पिसाए। तैसे बात न पूछिए कभू न लाई पाए। कबीर जय जय तर आवत जात हो हटके नाही कोए। सो दर कैसे चौड़िए जो दर ऐसा होए। कबीर डूबा था कबीर डूबा था उबर पियो गुन की लहर च भक। जब देखियो बेड़ा जर जरा तब उतर प्रियो हूं पर का। कबीर पापी भगत न पावे हर पूजा ना सुहाए। माखे चंदन पर हरे जय बिगंध न तह जाए। कबीर वैद मुआ रोगी मुआ मुआ सब संसार। एक कबीरा नाम हुआ जे नाही रोवन हारा। कबीर राम ना त्यायो।

पर्वतगारा कवीर कस्तूरी पिया पवर पहे सवदास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गहगच प्रयोग टंब कै कंठे रिहो गयो राम आए परे धर्म राय के बीचे तूमा ताम कबीर सागत किते सुकर भला राखे आछा गाओ ओ साकत बपरा मर गया कोई न लहै नाओ कबीर कौडी कौडी जोर के जोरे लाख करोरा चलती बार ना कुछ मिलियो लई लगोटी तोरा कबीर बैसनू ओ ता

हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। ऊंच पवन कन कामने शिखर पर ध्वजा फहराए, ताते पली मतु करे सत

कबीर कबीर जहां ज्ञान तै धर्म है, जहां झूठ तै पाप, जहां लोभ तै काल है, जहां बिकत तै आप। कबीर माया तजीता क्या पिया, जो मान तजिया नहीं जाए। मान मुनि मन बरगले, मान सबे को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया, शब्द जो वाया एक। लागत पही पुए गिर पया, परया कलेजे से का। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूका। अंधे कन लग गए, ज्यो बस बजाइये पूका। कबीर है गए बहन सगन कारना, छत्रपति की नारा। तास पटंतर ना पुजे, हर जन की पनिहारा। कबीर निरपनारी क्यों निंदिये, क्यों हर चेरी को माना। ओ मांग सुबारे बिखे को, ओ सिमरे हर नाम। कबीर थुन्नी पाई थित पई, सतगुर बंदी तीरा। कबीर हीरा बन जिया, नाम सरोवर तीरा।

बेड़ी नू कपर क्या करे जे पातन रहे सुचैत। फरीदा गली सुसजन वे इकट नी ना लहा धुखा जो माले कारण तिना मा पेरे। फरीदा एह तन पौकना नित नित दुखे कौन कन्ने बुझे दे रहा किती वगे पौन। फरीदा रब खजूरी पकिया माख्या नहीं वहाना जो जो डिहड़ा सो उम्र हथ पवन। फरीदा तन सुका पिंजर थिया तलिया खुंड काग अज सुरबन बौड़ो देख बंदे के भाग। कागा करंग डोलिया सगला खाया मास ए दो नैना मछ हो फिर देखन की आस। कागा चूड़ना पिंजरा बस त उडर जाहे जित पिंजरे मेरा सह वस मास न ते दुखाए। फरीदा गोर निमाणी सड़ करे निगरिया कर आओ सर पर मैथे आवना मरण ना डरिया।

मैं अपनी पाए आप सुवार मैं मिलया सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए रह सब जग तेरा होए कंधे उत्ते रुखड़ा किचरक बने तीर फरीदा कच्चे भांडे रखिए किचर ताई नीर फरीदा महल न सखन रह गए वसाया तल गोरा से नी मानिया बैसन रूहा मल आखी सिखा बंद के चलन अज के कल फरीदा मोते दा बन्ना एवं दिस ज्यों दरिया बेटा अगे दो जगत पिया सुनिए हूल पवे कहा इक नानू समसो जी आए एक फिर देवे परवाह अमल जे कीतिया दुनी विच से दर गए होगा फरीदा दरिया वे कन्ने बागुला बैठा केल करें दे हांजनों आचिंते बाजपे तिस रब दे केला विसरिया जो मन चित न चेते साना सो गाली रब किया साडे त्रैमण दे होरे चले पानी आना आयो बंदा दुनी विच वत असूनी बन मलकल मौत जाव से सब दरवाजे भन तिना प्यारिया भाइया अगे दिता बन वेखो बंदा चलिया चौंजनिया दे कान फरीदा मल जकीते दुनी विच दरगे आए काम फरीदा हम बलहारे तिन पंखिया जंगल जिन्ना वास ककर चुगन थल वसन रबण छोड़न पास फरीदा रुत फरीवन कंबिया पत चढ़े चढ़ पाहे चारे कुंडा ढूंढिया रहन किथाऊं नाए फरीदा पाड़ पटोला तज करी कंबलड़ी पैर जिन्नी वैसी सो मिले सही वैस करें महला तीजा काय पटोला पाड़ती कंबलड़ी पैर नाने घर ही बैठिया सो मिले जैनी अतरास करे महला पंजवा फरीदा गर्भ जना वडियाईया धन जो बनिया गा खाली चले धनी स्यों टिबे ज्यों मेहा फरीदा तिना मुख डरावण जिना विसारण नाओ एथे कुख कनेरिया अगे ठोर न ठाओ फरीदा पिछल रात न जागियो जीवंदड़ो मोयो जे तै रब विसारिया ता रब न विसरियो महला पंजवा फरीदा कंतरंगा बला वड्डा में मोहताज अलह से तीरत्या एह सचावा साज महला पंजवा

जिस जाना भगवपुड़ा जन्म न पीढ़ी अंग, क्या हंस क्या बगुला जाको न दर तरे, जे तुझ भावे नानका कागो हंस करे। सर्वर पंखी हिकड़ो फाही वाल पचास, इनान इह तन लहरी गठथिया सच्चे तेरी आस। कौन सु अखर कौन गुण कौन सुजह बामा, कौन सु अखर कौन गुण कौन सुमणिया मानता, कौन सुवे सोह करे जित वस्या वे कंत। निवन से अखर कौन गुण जिह बा मणिया मानता, ए त्रै भैने वैसकार तामस्या भी कंत। मत होंदे हुए आना तान होंदे हुए नितान, अणहोंदे आवंडाए को ऐसा भग सदाए, एक फिका न गलाए सबना मैं सच्चा थने। हिया उन कही ठाए मानक सब अमोल वै, सबना मन मानक ठाहन मूल मचांगवा। जे तो प्रिया दि सिख हियाओ न ठाहे कही दा, एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद सवैय श्री मुख बाक महला पंजवा। हाथ पुरख करतार करण कारण सब व्यापे, सर्व रहो भरपूर सगल कट रहो व्यापे। व्यापत देखिए जगत जाने कौन तेरी गत, सर्व की रख्या करे आपे हर पाते। अविनाशी अवगत आपे आप उत्पात, एक तू ही एक नाही तुम पात। हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार, जगत पिता है सर्व प्राण को आधार। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखान। हां के बल बल बल बल सदबल हार, अमृत प्रवा सर अतुल भंडार पर, पर ही ते अपरे अपर अपार पर। आपनो भावने कर मंत्रणा दूसरो धार, उपत परडो एक निमख तो कर। हां नहीं समसर जियारो निर्मर कूड़ प्राथ जाए, नाम लिए हर हर। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाने। हां के बल बल बल बल सदबल हार, सगल भवन तारे कथे किए प्रसारे। पूरे सर्व में आप है निरारे, हर गुण नाही अंत पारे। जी जन सब था तारे सगल, हर गुण नाही अंत पारे। जी जन सब थारे सगल को दाता एक अर्ख मुरारे। आप ही धारण तारे कुदरत है देखारे, वर्ण चहन नाही मुखना मसारे। जन नानक भगत दर तुल बहम समसर, एक जी क्या बखाने। हां के बल बल बल बल सदबल हार, सर्व गुण निधान गे कीमत ना ज्ञान। ध्यान गुचे ते उचो जानी जय प्रभु तेरो थान गे, मन धन तेरो प्राण गे कै सूत है जहान गे। कौन उपमा देव बड़े ते बड़ान, जाने कौन तेरो भेल खपारे। देव अकल कला है सर्व प्रा प्रभु सर्व को तान गे। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखान। हा के बल बल बल बल सदबल हार, निरंकार अकार छल पूर्ण विनाशी। हर कवंत रूप अनंत रूप निर्मल बेगासे, गुण गावे बेअंत अंत एक तिल ले पासे। जाको हो कृपाल सोजन प्रभु तुम्हें मिलासे। धन धन ते धन जन जय कृपाल, हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परस्यो। सो जन्म मरण दोथ रहयो, सत सत हर सत सत सत्य सत भणिए।
दूसर आन अवर ना आन पुरख अपावर आतन सुनिए। हमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए। जिह रसन चाक्यो तेह तेजन तृप्त गाय। जी ठाकुर सो प्रसन्न भयो सत्संग तै प्यार। हर गुरु नानक जिन परसयो तिन सब कुल कियो उधार। सच सभा दी बाण सत सचे पै धरियो सचे तख्त निवास सच तपावस करियो। सत श्री जियो संसार आप अभुलना भुलो रतन बनाम अपार कीम न पवै अमुलो। जह कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिनु पाए। हर गुरु नानक जिन परसयो ते फिर बहड़ फिर जोड़ न आए। कौन जो कौन ज्ञान ध्यान कौन विद उस्तुत करिए। सिर साधक तेती सकोर तिर कीम न परिये। ब्रह्मादिक संकाद से गुण अंतन पाए। अगह गहो नहीं जाए पूर सर्वर समाए। जे काटी सिरक दयाल प्राप से जन लगे भगत। हर गुरु नानक जिन परसो ते इत उत सदा मुक्त। प्रभु दातो दातार परयो जाचक इक चरना। मिले दान संतरेन जेह लग पव जल तरना। बिनद करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे। देह दर्श मन चाओ भगत मन ठहरावे। बलेचरा गंध्यार मैं सब कल उदरी इक नाम धरम। प्रगट सगल हर भवन मैं जन नानक गुर पार ब्रह्म। सवैय श्री मुख बाक महला पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। काची देह मोह हुण बांदी सठ कठोर कुचल कुग्यानी। तावत परमत रह नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जाने। जोबन रूप माया मदमाता बिचरत बिकल बड़ो अपमाने। पार धन पर अपवाद नारणिंदा जय मीठी जी माए हिताने। बलवंज सब कर तू पावा पेखत सुनंद प्रभ अंतर जामे। सील धर्म दया सुच नासत आयो शरण जी कैदाने। कारण करण समरथ श्री दर राख लेहो नानक के स्वामी। कीर्त करण जहरन सरण बन मोहन जोहन पाव दारण को। हर तारण तरण समरथ सब विद कुल समूह दारण सो। चित चीत अचीत जान सत संगत भरम देन मोहकत तो। मूर्त करी जसा पल सिमरन राम नाम रसना संगलो। हो छो का जल सुख बंधन कोट जन्म कहा दुख पो। सिख्या संत नाम भज नानक राम रंग आत्म सौरव। रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सुवार तरी। खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काढ़ बिपत हरे। मात पिता पाई अरबंद पे बूजन ते सासूज परी। वर्तमान होत दिन प्रात नित आवत निकट भुखम जरे। रे गुण हीन दीन माया क्रम सिमर स्वामी ए करे। कर गए लेह कृपाल कृपा निद नानक काट भ्रम परे। रेमण मूस बिला मैं गर्भत करतब करत महामुगना। संकत दूल झूल संग झूलत माया मग्न परमत गुगना। सुत बनता साजन सुख बंद पास मोह बड़ सोखन सोखना। बोयो बीज अहम अम अंकुर बतत बीतत औद करत अगना। मृत मजार पसार मुख निर्मुखत पुंचत भुगत भूख पुखना। सिमर गोपाल दयाल सत्संगत नानक जग जानत सुपना। देह न गेह न नेह न नीत माया मत कहा लोगारो। चतरन पतरन चौर न चावर बैती जात्री देन विचार।
रतन असवन गज सिंघासन चिन्मय त्यागो नांग सिंधारो सूरन बीरन मीरन खानम संगन को दृष्ट निहार कोटना ओटना कोसन छोटा कर्तव्यकार दो कर चारो मित्रण पुत्र कलतर साजन साख उल्ट जात बिर की शार दीन दयाल पुरख प्रपूर्ण छिन छिन सिमरो अगमे पार श्रीपत नाथ ना सर नानक जन हे भगवंत कृपा करतार प्राण मान दान मग जोहन हित चित दे ले ले पारे साजन सैन मीत सुत पाए ताहू तेले रखी निरारे धावन पावन कूर कमावन एह विद करत औद तन जारे करम धर्म संजम सुजनेमा चंचल संग सगल विदहारे पशपंखे बिरख सतावर बोविद जोन परम उतारे किन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ पारण पत सारे खान पान मीठ भोजन अंत की बार होत कद खारी नानक संत चरण लै संग उदरे मोहोर माया मगन चले सब डारे ब्रह्मादिक शिव संत मनेसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख धरण गगन आवत हुण दावत सिद्ध मनुख देव सरनादान वेक तिलता को मर्म न पावत प्रेपरा प्रीत प्रेम रस भक्ति हरजन कै हरजन ताके दर्श समावत तिसे त्या ज्ञान को जाच मुख दंत रसन सकल कस जावत रेमण मूढ़ सिमर सुख दाता नानक दास तुझ समझावत माया रंग बरंग करत प्रम मोह के कूब गुबार पर एता गभ आकाश न मावत बिस्त असव अस्त क्रिम उदर पर है दया दिस्ताय महाविकया को परतन छीन ज्ञान हरे है जोबन बीत जरा जरो गुरस्यो जम दूतन डन मर्त मरे हुए अणुक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त करे हुए प्रेम भगत उदर से नानक कर कृपा संद आव करे हुए गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र सब दुख हर सर्व रोखंडन गुणकारी काम क्रोध मद मसर तिशना बिन सजाए हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुज क्रिया चरण कम हृदय प्रवतारी साजन में सखा हर बंदप जी तन प्रण प्राण दारी उड़ गई स्वामी समरथ नानक दास सदा बलहारी आउद कटेवना जात प्रेम रासे चरण कम संग दावन बदे न जात बिदे मन दर्श मागे पावक जर न जात रे हो जन धूर लागे नीर न साकस बो चले हर पंथ पागे नानक रोग दो आगे मोक छेदे हर नाम खागे उद्दम कर लागे वो भाती उबरह इनके शास्त्र बो खटुआ पसम लगाए तीर्थ बो भरमत सूखम देह बंदे बह जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाक अनक पात थाट कर थटुआ सवय महल्ले पहले के पैकूंकार सतगुरु प्रसाद एक मन पुरख त्याय बरदाता संत सार सदा विखयात तार चरण लर दे बसावो तो परम गुरु नाने गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गावे गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावे इंद्राद भगत प्रहलाद के आत्म रस दिन जाने कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माने गावे सुन जन का जुग जोगेश्वर हर्ष पूर्ण सर्व कला गावे सुन काद साध दादा के मुन जाने त्यागावे छल छल
गावै गुण धोम अटल मंडल वै भगत पाए रह जाने कव कल सुस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माने गावै कपलाद आ जोगे सरे अपरम्पर अवतार वर गावै जम दगन परस रामेश्वरे कर कुठार तक तेज हरे ऊन दो अक्रूर बिद्र गुण गावै सर्व आत्म जिह जा जिन जाने कव कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माने गावै गुण वर्ण काचार खड़ दर्शन ब्रह्मादिक समरंथ गुण गावै गुण से सहस जिहवारा से आदि अंतले विदाग तुणा गावै गुण महादेव बरागी जिन ध्यान निरंतर जाने कव कल सुस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माने राज जोग माने बसो निर्वैर निरंतर श्रेष्ठ सगल उदरी नाम लै त्रो निरंतर गुण गावै सुन काद आदि जन काद जुगै लग धन धन गुरु धन जन्म सो कथ भलो जग पाताल पुरी जय कार तुन कब जन कल वखाने हर नाम रसक नाने गुरु गुर राज जोग माने सतजुग तै मान्यो छल्यो बल बावन भायो त्रैते तै मान्यो राम रघुवंश कायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कीर्तार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भगत जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आदि पुरख फरमायो गुण गावै रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावै समलोचन भगत बेन गुण रवे सहज आत्म रंग जमान जोग त्यान गुरश ज्ञान बिना प्रवे अवरना जाने सुख दे पर खेत गुण रवे गौतम रिख जिने जस गाए कबज कल सुजस गाओ ना सुजस नान गुरे नित नवतन जग छाय गुण गावे पयाल भगत ना गाद बिहंगम मां दे गुण रवे सदा जोगी अ जंगम गुण गावे मन बास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उचरे जिन हुक्म सब श्रेष्ठ सवारे ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाने जब कल सुज नाने गुर सहज जोग जिन माने गुण गावै नवनाथ धन गुर सास माए मां दाता गुण रवे जिन चक्रवे कहाए गुण गावै बलराव सबत पाताल बसंतो परथर गुण उचरे सदा गुर संग रहंत दुर्बा परूरो अंगर गुरु नानक जस गाए काउ कल सुजस नान गुर घट घट सहज समाए सवैये महले दूजे के इको ओंकार सतगुरु प्रसाद सोई पुरख तन करता कारण करण तार करण समर्थ सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथ ता धरियो मस्तक हथ सहज अमयो छूठ छज सुर नारे गण मन बोगाज मारियो कंट काल गज धावत लियो ब्रज पंच भूत एक घर राख ले समझ जग जीतो गुरुद्वार खेल समझ समसार रथ उन मन ली राख निरंकार कहो कीर्त कर सहार सब दी मजार लहना जगत गुरु पर समुरार जाकी दृष्ट अमृत तारे कालख खन उतारे तिमर ज्ञान जाय दर्स द्वार ओ जस सर्व शब्द सार गाखड़े बिखमकार ते नर भाव तार किए निर्भार सासंगत सहज सार जागीले गुर विचार निमरी भूत सदी परम प्यार कहो कीर्त कंस हार सब दी मजार
ਲਹਿਨਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਰ ਸਮੁਰਾਰ ਤੈਤਾ ਦ੍ਰਿੜੇ ਤੈਤੋ ਦ੍ਰਿੜੇ ਨਾਮ ਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਵਿਥਾਰ ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਸੁਜਨ ਜੀਆ ਕੋ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹਿ ਜਗਤ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪ ਤਲ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਤਮਾ ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਤਰੈ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਦੀ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਤੈ ਤਾ ਹਦਰਤ ਪਾਇਓ ਮਾਣ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਅਸਮਾਨ ਆਤਮਾ ਵਤਨ ਗਿਆਨ ਜਾਣੇ ਕਲ ਗਾਤੇ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਚਲ ਠਾਣ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਥਾਨ ਪਹਿਰਸੀਲ ਸਨਾ ਸਕਤ ਵਿਦਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਦੀ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪਰਨਾਸਨ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ ਸਰਨ ਜਾਚਕ ਬ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣ ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੇ ਸੋ ਪੈ ਤਰ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਰ

द्रम सपूर ज्यो नवे हिवे कस बिमल विचार एह ता तजाने सर्वगत अलख विडाणी सहज पाए संचयो किरण अमृत कल बाणी गुरु गम प्रमाण तै पाए सत्संग को तोख ग्रह जी लियो लयो हर परस्यो कल समुल वै जन दर्शन लैने भयो मन विश्वास पायो गहर गौ हदरत दियो गरण नास तन नाठियो अमयो अंतर्गत पियो हृदय विगा जाग्यो अलखे कल धरी जुगंतर सतगुरु सहज समा द्रव्यो समान निरंतर उदारो चित दारिद्र दहन पिखंत कलमल तरसन सदरंग सहज कुलोचर जह जंको लहने रसन नाम औखद नाम धार अर नाम समा सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतु नाम सो कल नाम सुरन रो है नाम परस जन पाए ओ सत पकड़ रव लोए दर्शन परस गुरु कै अड़सठ मजन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन पाओ सच सदा सच अंत सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बोए जिस सत संजम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसया गुरु कै सच जन्म प्रवान अमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवे गुरु नाम निद्रियाव जन्म हम काल गुतोवे सुख टल गुरु सेवी है

राम ससुर अरसूर नाम ओला स सैल लो जिन उदरिया सोई नाम अचल भगत पवतारण अमरदास गुरु को फुरिया सोई नाम सिमर नवनाथ निरंजन शिव सन का समुदरिया चौरा चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अमरीक भवजल तरिया उदो अक्रूर तलोचन नामा कल कबीर किलविख हरिया सोई नाम चल भगत पवतारण अमरदास गुरु को फुरिया तित नाम लग तीस दयावै जतीत पीसर मन वसिया सोई नाम समर गंगे पिता मैं चरण चित अमृत रसिया तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सतकर संगत उदरिया सोई नाम अचल भगत पवतारण अमरदास गुरु को फुरिया नाम कित संसार किरण राव सुर तर सख उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस पाख जन्मता ए सुकेत जित नाम हर हृदय निवास सुरनरगण गंधर्व से दर्शन आसास भलो प्रसिद्ध तजुतन कल जोड़ कर त्याए सोई नाम भगत पवजल हरण गुरु अमरदास पाए नाम ते आवे देव तेतिस अर साधिक सिद्ध नरसा नाम खंड ब्रह्मंड तारे जय नाम समाधि हरख सोग समकर सहारे नाम श्रोवण सर्व मैं भगत रहे लवतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार सतसुरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गुरु मत निर्वैर लीना जिस धीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना परस संत प्यार जह करतार संजोग सतगुरु सेव सुख पाए अमर गुर की तो जोग नाम नामन नाम रस खान यार भोजन नाम रस सदा चाय मोख मिष्ट बाणी धन सतगुरु सेवियो जिस प्रसाद गति अगम जाने कुल समूह समुद्रे पायो नाम पर निवास सुकथ जन्म कलव चर गुरु परसु अमर प्रगास बारज कर दहने सिद्ध सन मुख मुख गोजो रिद बसे बावांग जो तीन दुलंकंतर मोह रिद बसे अकिहो सोए रस तिन ही जात मुखो पंगत उचरे भगत उचरे अमर गुते गुरु तिरंग रत मस्तक निशान सचो कर्म कर जोड़ कर दयायो परस गुरु सतगुरु तिलक सर्व इच्छ तिन पायो चरण ता परसक अथ चरण गुरु अमर पवल रै हाथ तां परसक हाथ तां परसक अथ हाथ लगै गुरु अमर पै जी परता सुख अथ जी गुरे अमर प्रणिज नैनता परसो कैथ नैन गुरे अमर पखीज सवरण ता परसो कैथ सवरण सवरण गुरे अमर सुनिज सुखत सहयोजित ही बस गुरे अमरदास ने जगत पित सुखत सिर जल फणे जो सिर नीवै गुरे अमर नेत ते नार दुखना भुख ते नारे अंतन निधन लही कही
तीनर सुगना तुए ते नर से अंत न लइए तीनर शिव को करे ते नर सस संपजं संप तीनर दुलिच बह तीनर उथप बिथप शुक्ल है तीनर संसार में अपह पट रेप मद सकत तीनर जल फणे गुरु अमरदास सुप्रसन्न जे तै पढ़ एक मन धरियो एक कर एक पछानो नैन बैन तो एक एक दो ठाए ना जाने सुपन एक परत एक एक, एक समय लीनो तीस एक यार पंज सिद्ध पैतीस ना खीनो एक हो जे लाख अलख लखो अलख है एक एक कर वर्णो गुरु अमरदास जाल फणे तू एक लोड़ एक मने जय मत गई जय देव जय मत नामे सम्माने जय मत रोचन चित भगत कंबीर जाने रुक मांग दे करतूत नाम जपो नित भाई अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गत पाई तै लोभ क्रोध तिसना तजी सो मत जल जानी जुगत गुरु अमरदास निज भगत है देह दर्श पावो मुकत गुरु अमरदास परसे पम पातक बिनास गुरु अमरदास परसे ऐसे साधक आसास गुरु अमरदास परसिए ध्यान लिहिए पौ मुक गुरु अमरदास परसिए अभो लबै गो चुक एक बिन दुगण जोतो रह समंत्र मनावल जल पा पदार्थ तड़े गुरु अमरदास डिठे मिले सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग्रह ताते अंगद लै ना प्रगट तास चरण लिवरायो तित कुल गुरु अमरदास आसा निवास तास गुण कौन वखानो जो गुण अलख मुक्त न गुण अंत न जानो बोतो विदात निर्भयो सब अंग संगत कुल धरण गुरु अमरदास कीर्त करह त्राय त्राय तू पा शरण आप नारायण कला धार जग मैं परवरियो निरंकार आकार जो जग मंडल करियो जय कहते भरपूर सब दीपक दीपाए जय सिख संग्रह तत् हर चरण मिलायो नानक कुल निमल तवत्रो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारण तरण जन्म मरण जन्म पा शरण तो जब तब सा संतोख पिक दर्शन गुरसिख शरण परे ते बरे छोड़ जमपुर की लिखे भगत पाए भरपूर देव चरे करतारे गुर गहर दरियाओ पलंकडो पलकडो बंत तारे नानक कुल निमल निमल अवतरो गुण करतारे उचरे गुरु अमरदास जिन सेवे तिन दुख दर दर पर हर परे चिचित अरदास कहो पर कह बिन सको सर्वचिन तुझ पासा संगत हो तको तेरे हुकुम पवे निशान तो करो साहब की सेवा जब गुर देखे शुभ देश नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहो गुरु अमरदास कारण तो कारण जिव तू रख तिव रहो भीखे के गुर ज्ञान हर ध्यान तत् सो तत् मिलावे सच सच जानिए एक चित लिवलावे काम क्रोध वस करे कम पौन उड़ंत दावे निरंकार के वसे देश हुकम बुझ विचार पावे कल मैं रूप करता पुरख
ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਓ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਓ ਸੋ ਭੀਖਾ ਕਹੈ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਰਹਿ ਸੰਤ ਹੋ ਟੌਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀ ਮੁਖੋਏ ਪੰਡਿਤ ਮਿੱਠੇ ਬਰਸ ਏਕ ਹੋ ਫਿਰੋ ਕਿਣੈ ਨ ਪਰਚਾ ਉਪਲਾਇਓ ਕਹਿਤ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨ ਆਇਓ ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਤਿਨਕੇ ਗੁਣੋ ਕਿਆ ਕਹੋ ਗੁਰਦੇ ਮਿਲਾਇਓ ਭੀਖਿਆ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੋ ਪਹਿਰ ਸਮਾਸਨ ਆਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਸਣ ਚੜਿਓ ਧਰਮ ਤਨੋ ਕਰ ਗਹਿਓ ਭਗਤ ਸੀਲੈ ਸਰ ਲੜਿਓ ਭੈ ਨਿਰਪੋ ਹਰ ਅਟਲ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਨੇ ਜਾ ਗੜਿਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਅਪਤ ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਿਖੰਡ ਭਲੋ ਪੁਹਾਲ ਤਜੂਤਨ ਨਿਰਪਤ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਬਰ ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚ ਸਲ ਪਾਲ ਤੈ ਦਲ ਜੀਤੋ ਇਵ ਜੁਧ ਕਰ ਘਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਂ ਰੋਮਾਵਲ ਕੁਸੁਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤਣ ਆਵੈ ਰਾਮ ਸੰਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਕਬਜਨ ਭਲ ਉਣੈ ਜੋ ਗਾਵੈ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਆਵ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਗਾਵ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰ ਜਣੇ ਕੀ ਆਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਅਵਨਾਸੀ ਅਵਗਤ ਤੇ ਆਏ ਜਿਸ ਭੇਟਰ ਭੇਟ ਜਿਸ ਭੇਟੇ ਦਰਿਦਰਨ ਚੰਗ ਪੈ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤਾਸ ਗੁਣ ਜੰਗ ਪੈ ਜੰਗੋ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੁਜਨ ਜਨ ਕੀਰੇ ਅਮਰ ਨਾਮ ਜਾ ਕੋ ਹੁਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਰ ਤਰਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਚਾਹਕ ਤਤ ਸਮਤ ਸਰੇ ਕਵਕਲ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਦਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰੇ ਅਬਰ ਪਰੇ ਛੁੱਟਤ ਪਰਵਾ ਅਮੇ ਸਮਰਾ ਪਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਫਰਿਆ ਤੇ ਪੀਵੈ ਸੰਤ ਕਰੈ ਮਨ ਮੱਜਣ ਪੁਬ ਸਿਨਹੁ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਤਿਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰ ਅਣਪੈ ਪਤ ਦੀਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਲੈ ਉਦਰ ਤਰੈ ਕਵਕਾਲ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰੇ ਅਭਰ ਫਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਗੁਣ ਮਿਮਲ ਸਤਸੰਗਤ ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਫਿਆ ਜਾਗੈ ਮਨ ਕੌਲ ਪਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਘਰੇ ਲਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਤਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸ ਪੰਚ ਕਰੇ ਕਵਕਾਲ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰੇ ਅਭਰ ਪਰੇ ਅਣਪੋ ਅਨੁਮਾਨ ਅਕਲ ਲਾਗੇ ਪਾਰਸ ਭੇਟਿਆ ਸਹਿਜ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਆ ਭਗਤ ਪਾਏ ਭੰਡਾਰ ਪਰੇ ਮਿਟਿਆ ਜਨਮਾਤ ਮਰਨ ਭਉ ਪਾਗਾ ਚਿਤ ਲਾਗਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰੇ ਕਵਕਾਲ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰੇ ਅਭਰ ਪਰੇ ਅਭਰ ਪਰੇ ਪਾਇਓ ਅਪਾਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਧਾਰਿਓ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਆਤਮ ਪ੍ਰਬੋਧ ਮਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਸਦਾ ਚਾਏ ਹਰ ਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਗਦ ਸਮਤ ਗੁਰ ਅਮਰ ਅਮਰ ਵਰਤਾਏ ਓ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਅਟਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ। ਸੰਤੋਖ ਸਰੋਵਰ ਬਸੇ ਅਮੇ ਰਸ ਰਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸੇ, ਮਿਲਤ ਸ਼ਾਂਤ ਉਪਜੇ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਅੰਤਰਨਾਸੇ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਾਇਓ ਦਿੰਤ ਹਰ ਮਗਨ ਹੁਟੈ, ਸੰਜਮ ਸਾ ਸੰਤੋਖ ਸੇ ਸਮਾਹ ਸਨਾਮ ਹੁਟੇ।

गुरु रामदास करो चरत अभय अमर पद पाए जग जीतो सतगुरु प्रमाण मन एक त्याय धन धन सतगुरु अमरदास जिन्ना दृढ़ायो नावनिद नाम दान जिस ताकी दासे सहर जसरोवर मिलो पुरख भेटियो बनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुरता नाम दृढ़ायो गुर रामदास करु चरै हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत परवा प्रीत पुपली ना हुटे सतगुरु शब्द था अमय तारा रस गुटे मद माता संतोख पिता सर सह सुमाए अजोनी संग हो जगत गुर बचन तराए अवगत गोचरे अपर पारे मन गुरु शब्द बसाए गुरु रामदास गल उचरे तै जगत उदाहरण पाए जगत उदाहरण अवनिदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम विसकी विखे निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई धन ते जनवट भागे ते मुकते भये सतगुर शब्द मन गुर परचा पाए गुर रामदास कल उचरै तै शब्द निशान बजाए से सदा सहज शावन संतोख समाचे सराचे सदा सील सन्ना सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद वो है अजोनी फल मामल सतगुर संग निवास है गुर रामदास कल उचरै तो सह सरोवर वास गुरजन को सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवास जिनको गुर सो प्रसन्न दुर्त दूर अंतर नास गुरजन को सो प्रसन्न नाम अभिमान निवार जिनको गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तारे पर जो प्रमाण गुरु पाए ओ तीन तिन सकथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुगत सब गुरु लग सतगुरु खी मातानिया जगजूत समान अणपोने जा नाम टेक जिते भक्त अखाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समान इह रहाज जोग गुर रामदास तुम्हू रस जाने जनक सोए जिन जाने उन मर्रा तरे सत संतोख समाचरे अमरा अबरा पसर फरे आकथ कथा अमरा पुरी जिस दे सुपावे इह जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवे सतगुरु नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तीन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो तारण तरण खिन मातर जाको दृश्य तारे शब्द रित विचारी काम क्रोध खोवे जियो जीण सबन दाता गम ज्ञान विख्याता एनस ध्यान तावे पलक न सोवे जियो जाको देख दर दर जावे नाम सो निदान पावे गुरम ज्ञान दुरमत मैल धोवे जियो सतगुरु नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे।

पूरे सतगुरु पाए हों बल बल जाऊं सतगुरु साचे नाम पर कौन उपमा देव कौन सेवा सेरों एक मुख रसना रसों जुग जोर कर पुण मन बच करम जान अणत दूजा नाम नाम सो अपार सर दिनो गुर रिद धार नाल कहु पारस परस कच हुए नाल कहु पारस परस कच कंचना हुए सुचंदना सुबास जास सिमरत अण तार जाके देख द्वारे काम क्रोध सही निवारे जी होंज बल बल जाओ सतगुरु साचे नाम पर राज योग तख दियन गुरु रामदास प्रथमे नानक चंद जगत भयो नंद तारण मनुख जन की उपरगास गुर अंगद दियो निधान अकथ कथा ज्ञान पंच भूत बस की निजमत न त्रास गोरे अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पथ अगन देखत गत चरण कौल जास सब विद मान्यो मानता भी भयो सो प्रसन्न राजयोग तख दियन गुरु रामदास राडे जिसे धरो धरत आरे व्योम आरे पौन ते नीर असर अवर अटल अनाद कियो सस रिख निस सुर दिन सैल त्रो फल फूल दियो सुर नर शब्द समुद्र क्या धारियो त्रिगुण जास सोएक नाम सुहर नाम सत पायो गुर अमर प्रगास कचो कंचन भयो शब्द गुर सर्व ने सुनयो बिकते अमृत हो नाम सतगुरु मुख फणयो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जा तारे पाहणे माने करे ज्ञान गुरु के विचारे काठो श्री खंड सतगुरु की दुख दर तिनके गए सतगुर चरण जिन पर से पास परे सुरन और भय जाम गुरु होय वल धने क्या गार बदीजे जाम गुरु होय वल लख बाए क्या कीजे जाम गुरु होय वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होय वल शब्द साखी सो सच्चे घर जो गुरु गुरु अहने जपे दास पाठ बिनत कहे है जो गुरु नाम हृदय तरे सो जन्म मरण दोथे रहे गुरु बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुरु बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुरु कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुरु कर सच गुरु का शब्द सपन अग्न कटे सब तेरे गुरु नायन बैन गुरु गुरु मेला करो गुरु सत काव नाल जिन गुरु न देख ते साकत संसार में गुरु गुरु गुरु कर मन मेरे तारण तरन समरा श्री दो काल युग समरा श्री काल युग सुनत समाज सवन जिस केर हुण दुखन नास सुखदायक सूर जो धरत त्यान बस तै नेर पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देख त्याग जाय कै परेर जो हर बुद्ध रिद सिद्ध जात गुरु गुरु गुरु कर मन मेरे गुरु मुख देह गुरु सुख पाए हुती जो प्यास पियो सुपिवन की बंच सिद्ध को मिद बिलाए हो पूर्ण भो मन ठोर बसो रस बसन सो जो दहन जसाए हो गोविंद वाल गोविंद पुरी सम जल ने तीर भी पास बनाए गए हो दुख दूर बरखण को सो गुरुमुख दे गुरु सुख पाए समरथ गुरु सिर हथ तरियो गुरु किन्नी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगण हरो निसबासर एक समान ध्यान सो नाम सुनय सो सतपान डरो भन दास सुआतम आस जगत गुरु की पारस भेट परस करो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ तरियो।

ਗੁਰੂ ਹਰ ਤਪਾਈ ਹੈ ਉਦਦ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਉਦਦ ਗੁਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਗ ਨਖ ਹੀਰ ਮਨ ਮਿਲਤ ਲਿਵਲਾਈ ਹੈ ਫੁਣ ਗੁਰੂ ਪਰਮਲ ਸਰਸ ਕਰਤ ਚੰਦ ਕੰਚਨ ਪਰਸ ਮੈਲ ਦੁਰਮਤ ਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦਾਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੁਟਕੰਦ ਦਾ ਸਦਵਾਰ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਬਿਮਲ ਸਰ ਸੰਤ ਸਿਗਨਾਈ ਹੈ ਨਾਮ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਦਾਨ ਹਰ ਉਰ ਧਰਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰਹਿ ਜਹ ਕੀ ਸੇਵ ਸਿਵ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਣ ਤਰਹ ਤੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਨ ਰਹਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤਰੈ ਤੇ ਸੰਤ ਹਿਤ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਤਾਰੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮੁਣ ਜਨ ਰੇ ਤਰਹਿ ਨਰਦਾਦ ਸੰਕਾਦ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਤਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੱਗ ਤਜੋ ਰਸ ਜਨ ਰੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤ ਕਹਿ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾ ਜੀਵਨ ਦਿਨ ਸਤਯੁਗ ਜਿਨ ਧਰੂ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਉਹਦਰੰਗ ਹਸਤ ਕੌਣ ਮਾਥੇ ਪਰ ਤਰਿਆ ਅਲਖ ਰੂਪ ਜੀ ਲਖਣ ਜਾਏ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਸ਼ਰਨ ਹਾਏ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਤਾਰੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰ ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵੜ ਗੁਰ ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆਣ ਕੋਇ ਗੁਰਪ੍ਰਸੰਦ ਬਰਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਬਣਵਾਰੀ ਤਿਨ ਲੈਨਾ ਥਾਪ ਜੋਗ ਜਤਾਰੀ ਲਮ ਲਹਿਨੇ ਪੰਥ ਤਮ ਕਾ ਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਕੋ ਦੀਆ ਤਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥਪੋ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਕਰ ਨਾਮ ਅਖੇ ਨਿਧਿ ਆਪੋ ਆਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਅਖੇ ਨਿਧਿ ਚਹੁ ਜੁਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਜੋ ਚਰਨ ਸਰਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀ ਅੰਗ ਪਰਤਖ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਮੀ ਆਦਿ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਪਰਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਗ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰਗੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨੇ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪੈ ਕਰੇ ਵਿਚਿਤ ਜਾਉ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ ਜੀਤੈ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਨ ਸਿਵ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰਤੇ ਰਘੁਬੰਸ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਸਰਥ ਘਰ ਮਨ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਾਣ ਕੀ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ਰਣੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰਗ ਸੰਸਾਰ ਅਗਮ ਸਾਗਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਏ ਆ ਜਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਾਗਾ ਇਹ ਆਈਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪਰਤ ਆਹੀਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਏ ਈ ਜਿਨ ਜਨ ਕੈ ਤਿਨ ਕੋ ਪਦਵੀ ਉੱਚ ਭਏ ਤਜ ਮਾਇਆ ਮੂਲ ਉਬੈਰ ਲਾਲਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਗਏ ਅਵਲੋਕੈ ਬ੍ਰਹਮ ਭ੍ਰਮ ਸੋ ਛੁਟਕ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਰਣੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਗ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰਗ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਘਟ ਘਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਇ ਆਪਦਾ ਜਸ ਜਣ ਕੈ ਇੱਕ ਪੜੈ ਸੁਣੈ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਤੈ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੁਧ ਮਨ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਵਿਦ ਸਹਿਤ ਬਕਰੰ ਕੰਚਨ ਤਣ ਹੋਏ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਕੋ ਜੋ ਸਰੂਪੀ ਧਿਆਨ ਤਰੰਗ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗਨਾਥ ਜਲ ਥਲ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਪੂਰ ਬਹੁ ਵਿਦ ਵਰਣੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਗ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਤ ਨੇ ਚਲ ਤਰੂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ
तिन तरय समुद्र दरखिन एक मै जल हरे बिम जुग जुग रचा कुंडलनी सुरजी सत्संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहिब सब परमान बज करम से भी है सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मुद्र बैन कूड़ सैन संग सोभ कहत मान जिसो जिसे दही पाद खाए जियो देह रूप देह करूप अनत अनूप मोह मा मगन भय मग भय किनकने शब्द चुनकार खेल तपाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मिट सके ईस बम ज्ञान त्यान धरते ही चाहे जियो सत साच श्रीनिवास आदि पुरख सदा तुहें वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरंकार बेशुमार सर्व को काहे जियो सथुर चित भगत हित भेख तरियो हर नाक्ष हरियो नक विदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताए जियो सत सा श्री निवास आदि पुरख सदा तुहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीत बसन कुंद दसन प्रिय सहत कंठ माल मुकुट सील मोर पंख पा चाहे जियो बेव जीर वडे धीर धर्म अंग अलख अगम खेल किए अपने उसाहे जियो अकथ कथा कथि न जाए तीन लोक रह सुमाए सुता सिद्ध रूप धरे हो साहन के साहे जियो सच सा श्री निवास आदि पुरख सदा तुहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो बलै सलन सबल मलन भगत लै फलन काल कुरु नह कुलंक बजी दल डल चढ़ू दल रवंद जियो राम रवन दुर्त दवन सकल भवन सुकुशल करण सर्व भूत आपे देवाद देव सहस मुख फणंद जियो जरम करम मछ कछ हो बारह जुमना के कोल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिये तार तज विकार मन गिंद सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुरु कहे मान निज थान सच जान मंत्र है निस बासर होय कल्याण लह परम गत जियो काम क्रोध लो मो जन जन स्यो छाड़ तो होमे का फंद काट साध संगरत जियो देह गे त्रेह स्ने चित विलास जगत हित चरण कमल सदा स्वयं दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही तार तज विकार मन गोविंद श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो सेवक भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका निरंकार परम सदा सलामत कहन सके को तू कदका ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अगणत तिनको मोह भया मनमत का चौरासी लख जोन उपाय रिजक दिया सब हूं को तदका सेवक के भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका वाह वाह का बड़ा तमाशा आपे हसे आपे चितवे आपे चन सूज परगासा आपे जल आपे थल थमने आपे किया कट कट बासा आपे नर आपे फुन नारी आपे सार आप ही पासा गुरमुख संगत सब विचारो वाह वाह का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन प्यार पूरहा अमृत मिठे जाके बचना मन ब्रह्मादक सर द्राद के काल का काल निरंजन जचना
गुरु प्रसाद पाई परमार्थ सत्संगत से ती मन खचना किया खेल बड़ मेल तुमसा वाह गुरु तेरी सब रचना अगमन अंत नाद नाद जिसे कोई न जाने शिव ब्रंज तारे ध्यान नित जिस भेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई भंजन गड़न समरथ तारण तारण प्रभ सोए नाना प्रकार जिन जगियो जन मथरा रसना रस श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित बस गुरु समरथ करे त्रव बुद्ध समत समारण को हूं धर्म तुजा फिरंत सुदाग पुंज पुंज तरंग निवारण को मथुरा जन जान कही जो जी साच सो और कछना विचारण को हर नाम बहुत बड़ो कलज कल में भव सागर पार उतारण को संतत ही सतसंगत संग सुरंग रते जस गावत है त्रम पंथ तरे उतरणी तारे आवरह लिव तारण तावत है मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छत ही फल पावत है रब के सुत को तृण तैन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगत दिन आगर गहर गंभीर वड़ सुबरे सदा साबिदरत नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मटे दुकागर कल युग विदुरत दूर कर बे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर जाको मुंत अंतरे फिरते सगल युग भय कऊ पावे आत्म प्रगास को वेद बाणी सहत बिरंच जास गावे जाको शिव मुन जय गाय न तजरा तजात कबलास को जो जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूड़ फेंकी है फिर तुदास को सोतन सतगुरु सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दी गुरु रामदास को नाम दान त्याने अंतर्गत तेज पुंज तेह लोक प्रगासे देखते दर्श प्रगटे परमत भज दुख पर हर सुख सहज विगासे सेवक सिख सदा तलुबत अलसमु जो कुसम सुबास विद्या मान गुरु आप तप्यो सिर थिर साचो तख्त गुरु रामदासे तारियो संसार माया मद मोहत अमृत नाम कियो दियो समरथ हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत हृदय सिद्ध न छोड साथ दान बडुवत वंत महाबल सेवक दास के तथ ताहे कहां प्रवाह कहूं के जाके विशेष धरियो गुर हाथ तीन भौन भरपूर रह सोए आपन सरस रखियो ना जगत खोए आपने आप ही पायो सुरनारे असर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असर नर गण गंधार खुजंत फिर अवनाशी चल जोनी संभव पुरखो तुम अपार परे करण करण समरस्य दासोई सर्ब जी जिनवा मन जमा त्याए श्री गुरु रामदास जय जय जग में तै हर परम पद पाए हो सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोविंद दियो अंगद अनंत मूर निज तारी अगम ध्यान रस रस कयो गुरु अमरदास करतार की।

जन कह कलश दीपायो सोरठे। गुर अर्जुन पुरख परमान पारथो चल नहीं, निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारयो। पव जल सायर सेत नाम हरि का बोहे था, तो सतगुर संहेत नाम लाग जग उधरयो। जगत उदाहरण नाम सतगुर तुठ पायो, अब नाहे अवर सर काम।

अंत न पावत देव सबै मन, इंद्र महा शिव जोग करी, फुन वेद बिरंच विचार रहे हो, हर जाप

संगत श्रिष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारण को गुरजोत अर्जन माहे तरी।

मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पद ते मत चूकें रे मन, भेद बभेद ना जान बियो। परतक्ष हृदय गुर अर्जुन कै,

फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। कल समुद्र पै रूप प्रगट हर नाम उधारण बसह संत।

पान मथुरा काश भेद नहीं, गुर अर्जुन पर तख हर। अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावे, नित पुराण बाची है वेद ब्रह्मा मुख गावे। अजय

खत्री सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करे शरीर खेत पछाण बीजय दान सो खत्री दर गए परवान लब लोभ जे

सीता लै गया दह सिरो लक्ष्मण मुओ सराप नानक करता करण हार कर विखे था प्यो थाप।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद अभ्यागत ना आखियै जिनके मन में परम तिनके दिते नानका ते हो जिहा धर्म अपै

बिन सतगुरु जम काल ना छोड़ई, दूजे पाए खवाई। जो बन जांदा नदर ना आवई, जर पहुंचे मर जाई। पुत कलत मोहे तह, अंत बेली को ना सखाई। सतगुरु सेवे

पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंदले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत ना बुझनी शब्द ना करहें परगास। ओना अपनी अंदर सोध नहीं गुर बचन ना करहें विसास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विगास। हर ज्ञानिया की रखुदा हो सद बलिहारी तास। गुरमुख जो हर सेव दे जन नानक ता का दास। माया पयंगम सर्प है जग केरिया बेख खाई। बेख का मारन हर नाम है गुर गरड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखया तिना सतगुर मिलया आए। मिल सतगुर निर्मल होया बिख हो मैं गया बिलाय। गुरमुखा के मुख उजले हर दर के शोभा पाए। जन नानक सदा कुर्बान तैन जो चलने सतगुर पाए। सतगुरु पुरख निर्वैर है नित हर दे हर लिवलाए। निर्वैर नाल वैर रचाईंदा अपने कर लुकी लाए। अंतर क्रोध अहंकार है अनदिन जलय सदा दुख पाए। कूड़ बोल बोल नित पौंक दे।

पिता नाम तिस जाय। हर हर नाम न चेतनी करत आप खुआए, हर गुरमुख कृपा तारी अन जन बिछड़े आप मिलाए। जन नानक तिस बलिहार न जो सतगुर लागे पाए, नाम लगे से उबरे बिन नावें जमपुर जाहे। नानक बिन नावें सुख नहीं आए गए पछताए।

लख चौरासी बेदनी तिसना जलती करे पुकार एहु मोह माया सब पसरिया नाल चले ना अंती वार बिन हर शांत ना आवई किस आगे करी पुकार वड पागी सतगुर पाया बुझिया ब्रह्म विचार तिसना अगन सब बुझ गई जन नानक हर उर तार असी खते बहुत कमाम दे अंत ना पारावार हर

उतारु तिशना बुझे तपत हुए हर कह नाए प्यार नानक गुरमुख पाइए हर अपनी कृपा तार बिन शब्द जगत बर लिया कहना कछु ना जाए हर डके से उबरे शब्द रहे लिवलाए नानक करता सबके जानदा जिन जिन रखी बणत बनाए होम जग सब तीर्थ पड़ पंडित थके पुराण बिख माया मोह ना मिटाई विच होम माया बन जान सतगुर मिले मल उतरी हर जपिया पुरख सुजान जिन्ना हर हर प्रभ सेविया जन नानक साध कुरबान माया मोह बहु चित वदे बहु आसा लोभ विकार

0: जासन जन्म गवाई सत संगत हर मेल प्रभु हर नाम वसै मन आए जन्म मरण की माल उतरे जन नानक हर गुण गाए
1: तुर हर प्रभ करता लिखिया सो मेटना ना जाए जियो पिंड सब ते सदा

अपने पत के साध आपे खाए, तिसका क्या सलाहिए पाए, दर्शन का बल जाए। सतगुर बिच बड़ियां बड़ियाइयां पाए, करम मिले ता पाए, एक हुक्म मन ना जाननी पाए, दूजे पाए फिराए। संगत टोई ना मिले पाए, वैष्ण मिले ना थाओ,

भुजन सकाकार बाण तरण तर पवन तुझे आए दा अन दिन सदा बिहार बिन सतगुर किने ना पाया कर कर थके विचार नदर करे जे अपने ता आपे लवार नानक गुरमुख जिनी ते आया आए से परवान

नानक सतगुर बाहो बाहो जिसते नाम प्राप्त होए हर प्रभ सच्चा सोहेला।

अंतर सतगुर गुरु सब पूजे सतगुर का दर्श देख सब आए मनिया सतगुर परम बिचारी जित मिल तिसना भुख सब जाए हो सदा सदा बलहारी गुर अपने जो प्रभ सच्चा दे मलाए नान कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरने लगे आए जिन पिरिया सोने हो से सज्जन मैं नाल अंतर बाहर हो फिरा भी हिरदे रखा समाल जिना एक मन एक चित तिहाया सतगुर।

गुण उचरहे गुण मह सवै समाय नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रभ आए। मनमुख माया मोह है नाम न लगे प्यार कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार बिख माया धन संच मरहि अंते होए सब शार कर्म धर्म सुत संजम करहि अंतर लोभ विकार नानक।

जित बसिया मन आए, रागनाद सब सच है, कीमत कही न जाए। राग नाद बाहरा इनी हुक्म न बूझिया जाए, नानक हुक्म बूझे नारास होए, सतगुर ते सो जी पाए। सब किस तिस ते होया ज्यों तिसै धीर जाए, सतगुर बिच अमर

गुरमुख बस मन आय हृदय कमल पर ज्योति ज्योत मलाय नानक सतगुर तिन को मेलियो जिन तुर मस्तक भाग लिखाय अंदर तिसना अग है मनमुख भुख न जाय मोह कटंब सब कूड़ है कूड़ रहया लपटाई

गुर सतगुर नाम दढ़ाया माने अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल गोले।

गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारे नानक नाम निधान हृदय और हारे करे सो चंगा मान दुए गण तलाहे अपनी।

पातते उदाहरण पार ब्रह्म सम्राट पुरख अपार जिसे उधारे नानका सो सिमरे सिर जनहार दूज

को घटियो पोरा नज गाए अटमाल को सुख संग लाए पुनियायु हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत।

आनंद पया मेरे माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सह सेती मन बजिया बधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आइया।

आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारी आकर कृपा किर विगट कटे क्या ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सच्चा।

सब कहानी हरा नित करे रसना कहे आ कछु ना जानी चित जिन काहिर ले आ माया बोलन पैर वाणी कहे नानक सतगुरु बाज हो होर कच्ची वाणी गुर का शब्द रतन हीरे जित जड़ाऊ शब्द रतन जित मन लागा यो हुआ समाओ शब्द से ती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन ही

जय श्री अगनोदरम है जय श्री बार माया माया ग्रंसाई को जयी करते खेल चाया जात सपाणा ता जमया परवार भला पाया लिप छुड़की लगी तृष्णा माया मर बरताया ए माया जे थर बिसरा मोह पजै पाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागे तिनी बिचे माया पाया अरे आप मुल कै मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसे बिटो हो रहे लोक बिललाए ऐसा सतगुरु जी मिले तिसनु सिर सोपिए बिचो आप जाए यहदा

जिचर हरस पल्ले ना पाई, हरस पाए पल्ले पिए हरस बौन तृष्णा लागे आए। इहो हरस करमी पाई सतगुर मिले जिसे आए, कह नानक होर अरसा बिसरे जा हर बस मन आए। ए शरीरा मेरे यार तो मैं जोत रखी ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तो दिवज ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हो चलत नदरी आया। कह नानक श्रेष्ठ का मूर रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह हो मंदर बनिया। हर गाओ मंगल ने सखिए सोग दुख ना ब्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे। अनहत बाणी

के कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कह नानक हो शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर सियो चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम है जो तरी हर मन

बोलन सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तीने ताप नवारन हरा दुखंता सुखरास्ता को बिघना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास अरदास इको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती पातशाह जसम प्रथम गौती सिमर कै गुरु नानक ले त्याए फरंगत गुरते अमरदास रामदास हुई साय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर आय श्री हर कृष्ण त्याए जिह रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर घर नाम दे आवे ताए सब थाई हुए साय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई सदसम पाशें की जोत। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दार दा ध्यान तरके बोलना जे पंजा प्यारिया चौं साहब जादियां चाली मुकतिया हठिया जपिया तपिया जिन्हां गुरमुखा नाम जपिया वंड छकिया दीक चलाई ते गुआही दे कंडट कीता तिना प्यारिया सचारिया की पुत्र कमाई उल ध्यान तरके बोलना जे जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सिख दिते बंद बंद कटवाए खोपनिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़ियारे नाल चराए गए गुरुद्वारिआं दे सेवा लई कुरबानी कीतियां धर्म ने हारिया सिखे केसां सवासां संग निभाए तिन्हां दे पुत्र कमाई उल ध्यान तरके बोलना जे पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिआं दा ध्यान तरके बोलना जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जे सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। नाम चित्याव चित्यावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रचिया रहा देख तेग फतेह बिरद के पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलना जे सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान सह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसरी दर्शनी इशनान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलना जे सिखां दा मन नीवा मत उच्चे मत दा राखा पवाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जी श्री ननकाणा साहब ते होर गुरुद्वारिआं गुरु धामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शो जी निमाणिआं दे माण निताणिआं दे तान निउटिआं दी ओट धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी आप जी ने अपार बख्शिशां रहमतां कीतियां ने सतगुर से पातशाह जी परसों रोई तों समूह सात संगतां नूं खुले दर्शन दारे बख्शे के नदरे नदर निहाल कर रहे आप जी दा कुटान कुट धनवाद है सतगुर से पातशाह जी आप जी दे बख्शिश रहमत दे सदका सतगुर से पातशाह जी आप जी दे चरण सेवक सुरगवासी सरदार जसवंत सिंह पाबला बीबी जगतार कौर जी पाबला दा सपुत्र सुखजीत सिंह पाबला बीबी बीना कौर जी पाबला चरणजीत सिंह जी पाबला बीबी उमा कौर जी पाबला हरमेल सिंह जी पाबला बीबी नीलम कौर जी पाबला हरविंदर सिंह जी पाबला ते भैन कुलविंदर कौर बनवैत सतगुर से पाशे समूह परिवार वालों अपने पिता जसवंत सिंह पाबला की 20वीं बरसी मनाते सतगुर से पाशाह जी उन्होंने मिठी याद मनाते सतगुर से पाशे सारे परिवार की सुख शांति चढ़दी कला वास्ते गुरमुख परिवार ने परसों रोज तो आप जी के चरणों का टेक ऊट आसर लैके श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ कराए हुए सन। सतगुर से पाशाह आप जी की बख्शिश रहमत दे सदका आप जी की हजूरी अंदर सतगुर से पाशाह जी निर्विघनता सह संपूर्ण भोग पाए गए। सतगुर से पाशाह जी पाठी सिंह को बाणी पढ़ते हैं सेवादारा को सेवा करते हैं अनेक प्रकार की गलतियां भुला हो गई होगी अनजाण बच्चे जानक माफ करना अगो वास्ते सुते स्पष्ट बाणी पढ़न का बल बख्शना पढ़े सुनी बाणी का भाव आई संगत दे हिरदे विखे सुनाई संगत की हाजरी कदम लेखे लाने तिल फुल भेटा प्रवान करनी परिवारां विखे सुख शांति खुशियां खेड़े नाम दान की दात बख्शनी गुरसिखी जीवन की दात बख्शनी अंग संग होके सहायता करनी सेवादारा के सिर ते मेहर प्रयत रखना अगो वास्ते सुते स्पष्ट सेवा लैनी गुण अवगुणा विचारने अपने चरणा कमलों के प्रीत बख्शनी हर मैदान फतेह बख्शनी सतगुर से पाशे गुरमुख परिवार वालों
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਨਿਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਪੜਦੇ ਢੱਕਣੇ ਬੇਅੰਤ ਇੱਕੀ ਪੁੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਮਾਜਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇਗ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 1450 ਪੁੰਨ ਮਾਇਆ ਹਤਗੜ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ 101 ਪੌਂਡ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਾਸ਼ੇ 51 ਪੌਂਡ ਮਾਇਆ ਹਜ਼ਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ। ਆਪਣੇ ਚਰਣਾ ਕਰਮਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਟੇਕ ਉਲਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ, ਤਿਲ ਹੁਲ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨਾਇਕ ਨੇ ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਪੜਦੇ ਢੱਕਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿਸਾ ਸਿੰਘ ਵਰਤੇ ਜੋ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿਆਂ ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਵਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹ।

नानक आप निहाल सब कुल तार सी चलिया पत्सों जन्म सवार वजा वाए सी मानस क्या बेचारा ते हो लोक सुनाए सी नानक आप निहाल।

गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया एक नान

छट गवाया। मित्र प्यारा नानक जी, मैं छट गवाया, रंग कसुंभ पुली तो सजन की मैं की मन पौदी, हों तुद बिन अड न लहदे। नानक जी

पान खड़ग केत, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हासद लेह उबारी, सर्व ठौर मो दुष्ट दोख ते।

जिसनो करे रहम तिसना विसारदा, आप उपावन हार आपे ही मारदा, सब किस जाने।

महाराज सोहंग कहूं देव कन्यान के मान मोहंग कुजहंग प्रयात छंद श्री मुखवाग पातशाही दसवीं सिरंग सेत शत्रंग सो सुबंग विराजंग लखे शेल छाया करे तेज लाजंग विशाल लाल नैनंग तेरे बंके लोयन धंतरी साला विशाल लाल नैनंग महाराज सोहंग तिगंग आसवालंग हसंग कोट क्रोहंग कहूं रूप तारे महाराज सोहंग।

कहूं वीर हवा का गुरु गोविंद सूरा, कहूं वीर हवा का तरे बान पानं, कहूं पूप हवा का बजाए निशानं, ताकि गत नहीं जानी।